0: लाइका गोल्ड।
1: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
2: बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुध भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाय तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो

नाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगति छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे।

0: Mamster पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store. Nigel Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Nigel Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Nigel Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Nigel Couture.
2: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awarapan 2.
3: Usne mujhe chua, par apnaya nahi. To phir
2: now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
4: सप्टेम्बर महीना मा हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे.
5: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो.
6: ए तमे स्त्री ओ अमने छे ने पुरुषो ने खोटा ओबोवानो बंद करो.
4: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा. हवे राइसली पोटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन मा. टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270. नाटक नु नाम याद राखजो.
7: ओहे आई ना जग से लाज मैं इतना जोर से नाचिया.
8: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
9: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Breakfast with Deep Roger.
1: Okay, put the breakfast bowls down. Aloo ke paranthe bhi rakho aur utho thoda. Time for some dancing.
2: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे.
1: I want to hear you zooming. I want to see you zooming. Send me some pictures. Utotoji. It's Sunday. Easing you into your Sunday morning? Definitely not. This is Deep Raja. Good morning.

0: Breakfast with Deep Roger.
1: This part of the show is brought to you by Star Plus.
2: Previously known as Utsav Plus.
1: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392. Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashood Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
3: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snill Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
1: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
5: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 Our line.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410. दैट्स 8574-8410.
7: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
10: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
3: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99. Exclusively at quality food stores.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
11: कैरेटिनो बेटर घी, द हेल्थियर लो प्राइस कोलेस्ट्रॉल free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
0: Breakfast with Deep Roger.

0: visit starters.co.uk or call
1: 208-900-2323.
2: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
3: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
4: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th ऑफ सितंबर एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन. अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
5: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
6: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.
7: Still taking your calls on the vape shots. If vaping shops went lower or more restricted, would you visit your high street more? Or are we just looking at more internet shopping? What do you think? How does it work with you? Are you scared? Do you go past lots of vaping shops and think, yeah, garbage? Let me know.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्ट मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा।
2: छोटी गैया
1: भक्ति ना सुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग 5th September Wembley, 6th September Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner Leica Radio Network.
3: Mukesh aur Lata Mangeshkar ke evergreen gaano ki yaadon mein ek khoobsurat musical sham. Pankaj Sodha presents Hum to Tere Aashiq.
4: Hum to Tere Aashiq hai sadiyon pura.
3: Sweet memories of Mukesh and Lata with Sangeeta Melekar aur Mukhtar Shah live band ke saath. 29th August Hedge and High School Harrow. 30th August Woodminster School, South London. Dinner from 5 PM. Show starts at 7 PM. For tickets and more information, call Deepa on 07947561947.
5: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
4: पल भर के लिए
5: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज। इब्रॉक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर, फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-piece बैंड एंड मनीषा शर्मा। गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए। संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट्स सेंटर। टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25। बुक टिकट्स एट heroartscenter.com। बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02037737161।
6: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क।
7: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
10: साउथ हॉल ट्रेवल, Atoll protected. Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
11: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्ट मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति ना सुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
2: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance hosted by Anisa Nasir. Taiyar ho jaiye ek yaadgar shaam ke liye jahan ghazals milti hai Bollywood se.
3: Shaam chalne lage.
2: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Tickets starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
4: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
5: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट Sunday the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Power line.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: हॉन्स्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
8: परंपरा भी
9: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT। कॉल करें 07487-687-885।
10: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
11: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

0: लीजिए मदन मोहन के म्यूजिक पर और लता जी की खूबसूरत आवाज में ही रांझा फिल्म का ये गाना आपने सुना, और उससे पहले किशोर दा की आवाज में आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। और देखिए ये गाना हमारे आज के विचार से कितना मिलता जुलता है, जिसे हमारे विजय जी ने हमारे साथ शेयर किया है कि बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता दोनों ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। इसलिए बीते हुए पल के बारे में सोचना बंद करें और आने वाले पल की चिंता भी ना करें। आज अब जो पल है आपके पास उसमें ही जिए, उसी में अपनी खुशियाँ ढूंढें, आज का विचार। और चलिए इसी खूबसूरत विचार के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आपको बता दूं कि ये है लाइक अ रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा है आपके साथ एक बार फिर से 10 से 1 आपका साथ देने के लिए। और जितने भी साथी हमारा साथ दे रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। आप सुन रहे हैं लाइक अ रेडियो नेटवर्क, जो है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स। और आपके ढेरों मैसेजेस मिले हैं जिसमें बहुत सारी खूबसूरत बातें लिखी हैं जिन्हें प्रोग्राम में जरूर शामिल किया जाएगा। लेकिन उससे पहले सुनवाती हूँ अगला गाना, और उस अगले गाने से भी पहले ये हो जाए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो भारत पैसा भिजवाने की सोच रहे हैं वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI यू के मोबाइल ऐप, धन आज 1 पाउंड आपको देगा 128.65 भारतीय रुपए।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai Laika Gold.
3: Laika Gold.
4: This part of the show is brought to you by Star Plus,
5: previously known as Utsav Plus.
4: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.

0: kettle, microwave, food.
1: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
2: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934. Start to

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
2: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Daniel. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: Dad, dad, dad.
4: What's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, dad. You can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale, bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
5: South Hall. Desi Swad ka asli adda aa gaya hai.
6: परंपरा भी
1: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट, साउथ हॉल, UB2 4DB. कॉल 07795181001.
7: Have you noticed the way fans shout at football matches?
8: Oh, wake up!
7: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
1: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम. पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक.
9: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा.
1: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ. 29th अगस्त हेज एंड हाई स्कूल हैरो. 30th अगस्त वुडमैनस्टर्न स्कूल साउथ लंदन. डिनर फ्रॉम 5 PM. शो स्टार्ट्स एट 7 PM. फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947.
10: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
11: Tum itna jo मुस्कुरा रही.
12: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
13: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली.
14: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग. डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स. विजिट dairyvalley.net.

0: जतिन ललित के म्यूजिक पर कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में खामोशी द म्यूजिकल से लिया था ये गाना, और मुझे तो लगता है कि इस गाने के लिए जतिन ललित को भी बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें सिर्फ नॉमिनेशन मिला। लेकिन अवार्ड जीता कविता कृष्णमूर्ति ने, जिन्होंने इस गाने को गाया। और इस फिल्म के लिए मनीषा कोइराला ने भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। आपको बता दें कि आज मनीषा कोइराला अपनी हैप्पी वाली बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं और आज वो 56 इयर्स की हो गई हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो आज मनीषा कोइराला की हैप्पी वाली बर्थडे है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज वो 56 इयर्स की हो गई हैं और हमारे 90s की बड़ी ही खूबसूरत हीरोइंस में उनकी गिनती होती है। और आप सब जानते हैं कि मनीषा कोइराला नेपाल के एक बड़े ही प्रतिष्ठित और राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके जो दादाजी थे ना, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उनके फादर प्रकाश कोइराला भी नेपाल सरकार में मंत्री रहे हैं। सुभाष घई ने इनकी खोज की थी, इन्हें सौदागर फिल्म में काम दिया था जिससे उनकी बॉलीवुड में एंट्री हुई थी, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार, राजकुमार के साथ काम किया था। और उसके बाद तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया, अवार्ड भी जीते, और उन्हीं में से एक फिल्म थी जिसका की गीत मैंने अभी आपको सुनवाया और आप सबने उसे पसंद भी किया।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: तो चलिए, आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिले हैं जो बता रहे हैं कि ऋतु हमारे साथ है, उन पर एक नजर डालेंगे, लेकिन फिलहाल एक और गाना हो जाए मेरी ओर से आप सबके लिए।

0: किशोर कुमार और लता जी की आवाज में ये थी एस डी बर्मन की धुन, जिसे लिया था 1974 की फिल्म प्रेम नगर से। और आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर ऋतु शर्मा है आपके साथ।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: तो चलिए, समय आ गया है कि आप सभी के मैसेजेस पर एक नजर डाल ली जाए। हमारी प्रज्ञा का कहना है कि लगता है आज मेरी प्लेलिस्ट होगी। अब ये तो पता नहीं, प्लेलिस्ट में पहले से नहीं बना के आती, यहाँ पर बन जाती है आगे। और अगर आपकी प्लेलिस्ट के गाने बज रहे हैं तो इन्जॉय कीजिए, आप हमारा साथ दे रही हैं, जानकर बहुत खुशी है। थैंक यू अर्जुन जी। दिनेश पोपट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जासू जी गुड मॉर्निंग। और शब्बीर कुमार जी का कहना है, और शब्बीर जी का कहना है दरअसल कि आज तो मैं घर पर ही हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ, और तेज आवाज में आपका प्रोग्राम सुनने वाला हूँ। क्या बात है। और आपने चार लाइनें भी लिखकर भेजी हैं। लिखते हैं, गहराई प्यार में हो तो बेवफाई नहीं होती, गहराई प्यार में हो तो बेवफाई नहीं होती, सच्चे प्यार में कभी तन्हाई नहीं होती, मगर प्यार जरा संभल कर करना मेरे दोस्त, क्योंकि प्यार के जख्म की कोई दवा नहीं होती। हाय, ये तो बड़े दिल जलों वाली बात आपने की है आज। वेरी नाइस, थैंक यू साथ देने के लिए। थैंक यू विजय जी, आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, सुंदर विचार हमारे साथ शेयर करते हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू गिरीश जी, कहते हैं कल छुट्टी थी इंडिपेंडेंस डे की, तो कल मैं आपका साथ नहीं दे सका, तो कल का दिन आपने कैसे बिताया, लेकिन आज आप हमारे साथ हैं, जानकर खुशी है, स्वागत है आपका। थैंक यू प्रतिभा जी, अनिल सोनी जी वियाना से। थैंक यू मैकमारू जी, आपको पसंद आया आने वाला कल गीत, चलिए आपके नाम किया। थैंक यू मालती जी, कहती हैं मुझे हमेशा ही वीकेंड पर आपकी आवाज़ सुनकर मज़ा आता है, क्या बात है, मुझे भी आपका साथ बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू रोशनी जी। थैंक यू राजेश जी, कहते हैं आपको एक बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण रविवार की शुभकामनाएं, मैं काम भी करता रहूंगा और आपका साथ भी देता रहूंगा। बस यही तो हम कहते हैं, रेडियो सुनते रहिए, काम भी करते रहिए, इसका मजा यही है। थैंक यू। थैंक यू सहर जी। थैंक यू नरेंद्र भागिया जी, आपने भी चार लाइनें हमारे साथ शेयर की हैं। कहते हैं, अर्ज किया है कि रिश्तों की डोर कमजोर नहीं होती, आंखों की बातें दिल की चोर, रिश्तों की डोर कमजोर होती है, आंखों की बातें दिल की चोर होती है, रब ने जब भी पूछा दोस्ती का मतलब, तो हमारी उंगली आपकी ओर होती है। क्या बात है नरेंद्र जी, थैंक यू इन चार लाइनों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आंटी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, स्लाव से सुरजीत जी हैं हमारे साथ, और ये लिस्ट आपकी बहुत लंबी है, जिसे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर हॉलीडे का प्लान बना रहे हैं तो बस।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड, The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Like a Gold Greater London. Brought to you by Southall
0: Travel. ये मैसेज आप ही के लिए है। साउथ ट्रैवल को कॉल कीजिए, उनके पास दुबई जाने के लिए बड़ी अच्छी डील्स चल रही हैं, उन्हें फ़ोन कीजिए 02085748410 पर, और ये सब एट ऑल प्रोटेक्टेड भी है।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is Ritu Sharma.
2: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
3: TravelHubWorld.com Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.

0: आशा भोसले, मोहम्मद रफी साहब की आवाज और ओपी नैयर का म्यूजिक। फिल्म का नाम फिर वही दिल लाया हूँ, जो 1963 में रिलीज हुई थी, जिसे आपने सुना आपके मनपसंद रेडियो लायका रेडियो नेटवर्क से। और मैं ऋतु शर्मा आपके साथ, और आप मेरा साथ देते जा रहे हैं। थैंक यू मौसमा जी आपके मैसेज के लिए, थैंक यू वरुण जी, भरत गंगाराम जी, महेंद्र बजारिया जी, थैंक यू। शेखर जी कहते हैं, देखते हैं आज की जोड़ी नंबर वन कौन सी है। अभी तो मैंने बताई नहीं है, बताती हूँ नेक्स्ट वाले आवर में। थैंक यू महेंद्र बजारिया जी, आपको किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में गीत पसंद आया, आपके नाम किया। थैंक यू हंसा जी, दिव्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ऑफ कोर्स हमारे गुरुदेव गांजा जी, बिल्कुल आप हमारे साथ हैं, सो थैंक यू। उसके अलावा और भी मैसेजेस हैं जिन्हें पढ़ूंगी, लेकिन पहले ये बता दूं।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 376 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 104.23 pounds per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Leica Radio 90s, Leica Radio Punjabi, Leica Gold 2, now available on the Leica Radio mobile app and Alexa.
4: Ye hai
3: Leica Gold.
4: Leica Gold.
5: This part of the show is brought to you by Star Plus,
6: previously known as Utsav Plus,
5: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
7: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंडन पड़ रंगा से। स्टार्डम मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति ना सुर, गरबा नी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन, ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
9: Call 0208 574 8410, 0208 574 8410.
10: Southall Travel can take you there. Southall Travel, at all protected.
11: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं। और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके। इंडियन आइडल फेम सुगंधा डाटे लाइव इन कॉन्सर्ट संडे द 6th of September एट द मेशा लोहाना सेंटर लंदन। अपनी सीट्स अभी बुक कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल अश्विन ऑन 07956278228। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
12: Nigel Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Nigel Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Nigel Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Nigel Couture.
13: Deirdre, look! It's the bottom Liz this time, sliding across their car bonnet.
14: Leave them be, Philip. They just claim confident.
13: Claim confident?
14: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
13: Deirdre? Deirdre? Come back here.
15: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
16: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
17: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
18: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10kg is only £7.99, exclusively at quality food stores.
19: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
20: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
21: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
20: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
22: सप्टेम्बर महीना मा हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे.
23: तमे बटा पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो.
24: ए तमे स्त्री ओमने छे ने पुरुषो ने खोटा ओगोवानू बंद करो.
22: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाईनी जानमा. हवे राइसलीप, पॉटर्समार, ईफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटनमा. टिकिट्स अने वधु माहिती माटे आजे ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270. नाटक नु नाम याद राखजो.
25: Ritu Sharma live on Like a Gold Greater London. Like a Gold, part of the largest Asian commercial radio network in the UK.

0: यस सुहाग फिल्म का था ये गाना, 1979 की फिल्म, अमिताभ बच्चन और रेखा की फिल्म, और उससे पहले कुमार सानू की आवाज में 1942 अ लव स्टोरी का वो खूबसूरत गाना जिसे आज प्रोग्राम में मैंने बजाया क्योंकि आज मनीषा कोइराला अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। शी इज 56 टुडे और हम सब जानते हैं ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं। अभी हाल फिलहाल में ही उनकी संजय लीला बंसाली का एक सीरीज आई थी हीरा मंडी, जिसमें उन्होंने मल्लिका जान का काम किया था और दर्शकों ने इस कैरेक्टर को काफ़ी सराहा। और हम सब जानते ही हैं कि किस तरह से उन्हें कैंसर हुआ था, ओवेरियन कैंसर हुआ था, और सभी उनके फैंस घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन अमेरिका में उन्होंने अपना इलाज करवाया और पूरी तरह से कैंसर को बीट कर दिया। और जानते हैं उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है आई थिंक हाउ कैंसर गेव मी अ न्यू लाइफ, यानी कि कैंसर ने मुझे जीवन को एक नया नज़रिया दिया, एक नए नज़रिए से समझाया, मुझे ज़्यादा मजबूत बनाया। तो आज मनीषा कोइराला की बर्थडे है, आज हम उनके गीत आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन आपके भी ढेरों मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। आंटी जी कहती हैं अमिताभ बच्चन का गाना बजे तो मैं अपने आप को कैसे रोकूं? आपको ज़रूरत भी नहीं है रोकने की, आपका मैसेज ज़रूर आता है। सो थैंक यू, ये गाना आपके नाम पर जाता है। थैंक यू संध्या भाव सर, आज तो आपकी खूब एक्सरसाइज हो रही है, किचन में काम कर रही हैं और ठुमके भी लगा रही हैं, तो बस ये करते रहिए। वैसे आप काफ़ी पतली दुबली हैं, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज की आपको ज़रूरत है भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत कर लिया कीजिए क्योंकि फिट रहने के लिए तो एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। मालती जी थैंक यू कहती हैं मैं तो वेट कर रही हूँ कि जोड़ी नंबर वन कब शुरू होगा, मुकेश जी और मनोज कुमार के गीत। यस अब से बस थोड़ी ही देर में शुरू करने वाली हूँ, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। इसके अलावा हमारे गिरीश जी प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपने गाने की फरमाइश की है, देखती हूँ गाना होता है या नहीं, है ना। थैंक यू जैस्मीन, थैंक यू। एंड ये कौन है जिन्होंने हमें याद दिलाया है, चंदू जी आपने हमें याद दिलाया। यस हमें याद है कि आज सैफ अली खान का भी बर्थडे है, ज़रूर उनका गीत भी सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले कराची में जहीर खान सुन रहे हैं आपका स्वागत है, उलाज टोरंटो में हमारे साथ हैं, हमारी सुनीति हमारे साथ हैं, हिमांशु पटेल जी हैं, अमिता जी, प्रीति जी बेल्जियम से हैं, एंड जयंत जयवंते आप हमारे साथ हैं, दिव्या जी, और ये है योगेंद्र जैन, सभी का स्वागत है। और चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं जोड़ी नंबर वन का सिलसिला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 आज आपको देगा 128.65 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: From the first time they lose a
3: baby tooth, look, Mom.
2: To the countless times they forget to mention their
4: ingredients for food tech tomorrow.
2: To the last time you hear that school was
5: yeah, all right.
2: Kids grow up fast. Luckily at Tesco, we have back-to-school uniform that grows with them, including everything they need like trousers and skirts with adjustable hems and waists. So you can focus less on the cost and more on all this. Tesco, every little helps. Available in the majority of larger stores and online.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
6: This part of the show is brought to you by Star Plus,
7: previously known as Utsav Plus.
6: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
8: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
9: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
8: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: विजिट TravelHubWorld.com।

0: ऐसे
1: सेटको माइक्रोवेव फूड कंटेनर
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहां जिंदगी वहां सेटको माइक्रो।
3: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
4: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
5: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
6: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से। स्टार्डम मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा। भक्ति ना सुर, गरबा नी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: यस, लता जी और मुकेश जी की आवाजों में था ये गाना फिल्म हरियाली और रास्ता से। और आज की हमारी जोड़ी में मैं आपको मुकेश जी और मनोज कुमार के कॉम्बिनेशन के गाने सुनवा रही हूँ। आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी हरियाली और रास्ता, ये मनोज कुमार के करियर की टर्निंग पॉइंट वाली फिल्म थी। यानी कि इससे पहले मनोज कुमार की फिल्में आती तो थी लेकिन वो स्टार नहीं बन पा रहे थे, लेकिन ये फिल्म इतनी बड़ी सुपरहिट हुई कि उसके बाद मनोज कुमार के करियर को एक बड़ी उड़ान मिली। और माला सिन्हा तो इस फिल्म के आने से पहले ही सुपरस्टार थी। तो एक किस्सा बताती हूँ इस फिल्म से जुड़ा हुआ। दरअसल मनोज कुमार स्टार बने नहीं थे, माला सिन्हा बहुत बड़ी स्टार थी। और मनोज कुमार जब भी कोई रोमांटिक सीन आता था तो बहुत हेजिटेट करते थे, बड़े डरे सहमे से खुल के नहीं कर पाते थे। तो माला सिन्हा बार बार जाकर उनके सीन्स को चेक कर रही थी जब रिकॉर्ड हो जाते थे कि इसमें क्या गड़बड़ है क्या नहीं है, और मनोज कुमार को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन उनके फादर ने समझाया कि भाई ये वो इसलिए कर रही हैं ताकि फिल्म अच्छी बने, और अच्छी फिल्म होगी तो सबको फ़ायदा होगा। और मनोज कुमार को ये बात समझ आई, उन्होंने बहुत सारी बातें माला सिन्हा से सीखी भी। और देखिए सीख इतनी काम आई कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई और मनोज कुमार भी माला सिन्हा की तरह एक स्टार बन गए।
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो हमारे उल्लास कहते हैं कि भाई ये गाना तो ऋतु मेरी पसंद का था, चलिए फिर हमने आपके नाम किया।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
0: और संध्या भावसर कहती है क्या जोड़ी चुनी है, हंसा जी, अमिता जी, तोची जी, फरीदा जी एंड हमारे अहीर गुनोवा यादव जी, क्या बात है, आप सब गीतों को पसंद कर रहे हैं। चलिए जोड़ी का अगला गाना आप सबके नाम पर।

0: ਗੱਪੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ
1: All Monster products are nut free and made in Canada now available at your nearest Asian grocery store
2: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk. इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208-150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
3: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ये गाना सुपर हिट हुआ था और इस गाने से सुपरस्टार बन गए थे सैफ अली खान। उनकी फिल्म ये दिल लगी से था ये गाना। और आपको बता दें कि आज सैफ अली खान का भी बर्थडे है, यानी कि मनीषा कोइराला और सैफ अली खान दोनों बिल्कुल एक ही दिन एक ही ईयर में पैदा हुए हैं, 16 अगस्त 1970, और आज दोनों 56 ईयर्स के हो गए हैं, और इसीलिए ये गाना हमने उनके फैंस के नाम पर किया। और चलिए कह देते हैं सैफ अली खान को हैप्पी बर्थडे।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 104.23 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: लीजिए धर्मेंद्र और आशा पारीक की फिल्म आए दिन बहार के से था ये गाना। और उस जमाने में जो लोग फिल्में देखा करते थे उनका कहना था कि ऐसा जादू था धर्मेंद्र और आशा पारेख का कि बस उनके नाम से फिल्में लग जाएं, हिट हो ही जाया करती थी। और जब ऐसा म्यूज़िक रहेगा तो फिल्में क्यों नहीं हिट होंगी। और मुझे लगता है कि पुराने ज़माने में फिल्मों की कहानी से ज़्यादा अच्छे उनके गाने हुआ करते थे। और हमारी जासू जी कहती है मज़ा आ रहा है, तो चलिए साथ देते रहिए।
1: Like our gold.
2: This part of the show is brought to you by Star Plus.
3: Previously known as Utsav Plus.
2: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
4: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
5: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
4: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
5: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
4: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
5: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: Star Tours.

0: visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected. One performer,
3: countless personalities,
2: a whole universe of entertainment.
3: Sunil Grover live UK tour 2026.
2: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
3: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
2: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
2: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network. Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
4: I'm outside. Yes, literally just landed.
5: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
4: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
5: And you didn't pay those massive roaming charges?
4: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
3: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
3: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awarapan 2.
6: उसने मुझे छुआ, पर अपनाया नहीं। तो फिर
3: Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
7: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
8: बीकानेर वाला परंपरा भी
9: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फोर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
10: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
3: Looking for great value on quality flour? Head to your nearest quality food store today. Falcon Chakki Atta 10 kg is now available for an amazing price of just £7.99. Perfect for soft rotis, chapatis and everyday cooking. Don't miss this fantastic offer. Falcon Chakki Atta 10 kg, only £7.99, exclusively at quality food stores.
2: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
12: Feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Leica Gold.

0: खूबसूरत गाना, खूबसूरत आवाज़, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़, फिल्म का नाम दिल ने फिर याद किया, और उससे पहले आपने लता जी की आवाज़ में प्रेम रोग फिल्म का ये गलियां ये चौबारा खूबसूरत गीत सुना। लीजिए, इन दो गीतों के साथ प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है। और ये गाना ये गलियां ये चौबारा मैं डेडिकेट करती हूँ उन सभी महिलाओं को जो आज तीज का त्यौहार मना रही हैं। बहुत सारे साथियों ने कल तीज मनाई, लेकिन आज भी कुछ हरियाली तीज मना रही हैं, तो उनको बधाइयाँ। भाई, हमने तो कल बहुत ही बढ़िया पार्टी इन्जॉय की, या कहूँ तीज का त्यौहार बहुत ही खूबसूरती से मनाया अपनी दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, यू नो, डांस, खाना पीना, गपशप, मस्ती मज़ा करके, तो खूब मज़ा आया। एंड आई एम श्योर आपने भी कल इसी धूमधाम से तीज का त्यौहार मनाया होगा, और अगर आज मना रहे हैं तो हमारी ओर से आपको उसकी ढेरों बधाइयाँ। यह है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर, और योगेंद्र जैन कहते हैं कि कहाँ से लाती हैं ये शानदार गीत। अरे बस ये क्या होता है, मैं कंप्यूटर में घूमती रहती हूँ, जब तक गाना बजता है ना तो कंप्यूटर को चैन से बैठने नहीं देती हूँ, और जब भी कोई अच्छा सा गाना लगता है मुझे ये आपको पसंद आएगा, पकड़ के बजा देती हूँ, बस यही है। सो थैंक यू साथ देने के लिए। और प्रज्ञा कहती हैं कि ये गलियां ये चौबारा मैंने मिस कर दिया, ओ तेरे की क्या कर दिया, अब दोबारा पता नहीं कब बजेगा, अब मैं क्या करूं, अब तो मिस हो गया, तभी तो कहती हूं कि मेरे शो से दूर जाने का नहीं। एनीवेज, आप मुझे पता है आलू के पराठे बना रही है, लगता है उसमें ज्यादा खो गई। एनीवेज, शर्फून आप हमारा साथ दे रही हैं, थैंक यू विजय गुजोरी जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू संध्या भावसर कराची से, जहीर जी थैंक यू, एंड अहिर गुनवाजी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारी लिस्टर है महालक्ष्मी, थैंक यू आपके भी मैसेज के लिए। कहती हैं आप कि रोज रोज बढ़ रहा है दाम गोल्ड का, और रोज रोज बढ़ रहा है शान गोल्ड का, क्या बात है ऋतु, खुश हुई ये सुनकर। क्या सोचा है कमाल, थैंक यू महालक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अब बात कर लेते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम की। हमेशा ही इस वाले आवर में हम थ्री वर्ड्स गेम खेलते हैं, जिसमें एक बॉलीवुड के किसी गाने से मैं तीन वर्ड्स पिक करती हूँ, शुरू की तीन चार जो लाइन्स होती हैं उनसे, और आपको पहचानना होता है कि गाना कौन सा है, और जो काम आप आसानी से कर भी लेते हैं। तो चलिए आज के जो तीन वर्ड्स हैं जिनकी मदद से आपको गीत पहचानना है, पहला है फिजाओं, दूसरा वर्ड है इशारों, और तीसरा वर्ड है बहारों। 1962 में आई थी ये फिल्म, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है और मुकेश जी की आवाज़ है। अब तो हो गया ना आसान। बहुत ही पॉपुलर गाना है, और आज का गीत आसान भी है पहचानने के लिए। फिजाओं, इशारों, बहारों, 1962 की फिल्म है, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है और मुकेश जी की आवाज़ है। सोचिए और हमें बताइए कि ये गाना कौन सा है। अगर आपको पता चलता है तो भेजिए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से दोहराती हूँ, फिजाओं, इशारों, बहारों, 1962 की फिल्म, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, मुकेश जी की आवाज, कौन सा है ये गाना?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो वन पाउंड आज आपको देगा 128.65 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: At Amazon, over 50% of deliveries now come with less packaging or with no added packaging at all. It's a difference you'll notice on your doorstep, where you chat with friends, where your neighbor's daughter practices guitar, and where we deliver your new noise-cancelling headphones in the manufacturer's packaging. Ah, much better. Reduced packaging from Amazon. We're delivering change where it matters. On your doorstep. Based on 2025 Amazon packaging data across the UK and EU.
3: Like our gold.
4: This part of the show is brought to you by Star Plus.
5: Previously known as Utsav Plus.
4: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 39.

0: लता जी की आवाज में ये शानदार गाना। और आप जानते हैं लता मंगेशकर ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। राम तेरी गंगा मैली फिल्म से था ये गाना। राज कपूर ने जिसे डायरेक्ट किया था और रविंद्र जैन का इस फिल्म में म्यूजिक था। और इस फिल्म से जुड़ी एक बात मुझे याद आई है, आपको बताऊं कि सबसे पहले इस फिल्म में राज कपूर शशि कपूर की बेटी संजना कपूर को लॉन्च करना चाहते थे और वो सोच रहे थे कि उनके अगेंस्ट कोई नया लड़का लेकर आएंगे, लेकिन संजना कपूर ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। तो फिर उन्होंने अपने भाई अपने छोटे बेटे संजय कपूर को लॉन्च किया और फिर मंदाकिनी को लेकर आए ऑपोजिट रोल के लिए। और इस तरह से इस फिल्म में राजीव कपूर है उनके छोटे बेटे का नाम, राजीव कपूर को उन्होंने लॉन्च किया और फिर उसके साथ उन्होंने मंदाकिनी को फिल्म में काम दिया। और इस तरह से इस फिल्म में राजीव कपूर और मंदाकिनी की जोड़ी बनी। ये था गाना फिल्म राम तेरी गंगा मैली से आर्टिस्ट ऑफ द वीक का गीत। और अब शुरू करने वाली हूँ आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का सिलसिला। सुनवाती हूँ आपका पहला गाना लता जी और मन्ना डे की आवाज़ों में। और हमारा थ्री वर्स गेम भी चल रहा है, बहुत सारे आंसर्स मिले हैं। और कमाल की बात यह है कि अब तक कुछ को छोड़कर ज़्यादातर सबने सही जवाब दिया है। और मुझे पता है कि आप एक गाना है जिससे थोड़ा कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। ये सोचिए ईयर पर ध्यान दीजिए, 1962 की फिल्म है और म्यूजिक डायरेक्टर पर ध्यान दीजिए, शंकर जयकिशन है म्यूजिक डायरेक्टर, फिर आपको सही आंसर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला, सुनवाते हैं पहला गाना।
1: This is like a gold. Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.

0: यहाँ बिल्कुल मस्ती भरा है समा और गाना भी है मस्ती भरा। राज कपूर और मला सिन्हा की फिल्म जिसमें म्यूजिक है दत्ताराम वाटकर का, और ये है हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का पहला गाना। इस गाने को सुनकर ढेरों मैसेजेस आए हैं, तो बस थैंक यू सो मच। गीतों को आप एंजॉय कर रहे हैं, सुनवाती हूँ आपको एक और यानी कि अगला आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का गीत।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: लेकिन अगला गीत बजाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप देख सकते हैं दिवाली स्टोरी एट ओवो अरीना वेम्बली में ऑन संडे 27 सितंबर। अगर आपने अभी तक टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो diwalistory.com पर जाकर आप टिकट्स बुक करा सकते हैं। और याद रखिए लाइक और रेडियो नेटवर्क हैं इस प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स।
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma. This is Ritu Sharma.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: क्या खूबसूरत गाना है आशा जी और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ों में, और क्या म्यूजिक बनाया है ओपी नैयर ने। ये था हमारे आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का दूसरा गाना फिल्म ये रात फिर न आएगी से। थैंक यू दिनेश सॉरी जी आपके मैसेज के लिए, थैंक यू अमिता जी, थैंक यू। ये है हमारी प्यारी लिसनर जिनका नाम क्या है, मैसेज जब भी लिखते हैं नाम लिख दिया कीजिए। सुनीता लाल हाँ लिख रही हैं कि भाई मुझे मज़ा आ रहा है शो में और आप समोसे बना रही हैं क्योंकि फ्रेंड्स के साथ और अपने पति देव के साथ आप बंटवारा 47 देखने जा रही हैं और साथ में समोसे बनाकर ले जा रही हैं। आहा क्या मज़ा है, यानी कि फिल्म की फिल्म, मज़ेदार सनी देओल की फिल्म और साथ में गर्मा गर्म समोसे। देखो कहते साथी मुँह में पानी आ गया। चलिए मज़े के साथ देख कर आइए और फिर अगले हफ्ते मुझे बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और इसके अलावा बहुत सारे साथियों ने आंसर्स दे दिए हैं और जिन्होंने जवाब दिए हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। महेंद्र बजारिया जी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, शरफून उल्लाश, विजय गुडूरी जी, हाजरा जी, दिनेश पोपट जी, प्रीति बेल्जियम से, नीलेश तन्ना जी, माया जी वाटफट से, रजनीश जी, गीता जोशी, मीना शाह, गिरीश जी ईलिंग से, किरण हैरो से, संध्या भावसर, भरत गंगाराम जी, उषा खोड़ा एंड हमारी मालती जी, आप सभी ने गाने को सही सही पहचान लिया है। तो गाना मैं आपसे थोड़ी देर में बजाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि भैया उदित नारायण अगर आप के भी फेवरेट है मेरी तरह तो आप इस इवेंट को मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म करने जा रहे हैं विद सन आदित्य नारायण एट ओवो अरीना वैमली ऑन संडे 20th December। टिकट्स अवेलेबल हैं टिकट मास्टर एंड AXS पर। इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है प्लेका रेडियो नेटवर्क और आप इस शो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो जल्दी से अपनी टिकट्स बुक कराइए।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथोल ट्रैवल।
0: हॉलिडे जाने की सोच रहे हैं तो हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि दुबई के लिए अच्छी डील्स हैं साउथोल ट्रैवल के पास, उन्हें फोन कीजिए 0208574 8410 पर।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: Amazon offers term time working to their employees, like Anton, who's home to look after his daughters during their holidays.
3: Hello!
2: To him, this is the best sound in the world. Actually, maybe that's the best sound of all. Now that's term time working. Offered at Amazon. 10 weeks off guaranteed per year. Mix of paid holiday and unpaid time off. Conditions apply.
4: Ye hai.
5: Like a gold
6: travelhubworld.com kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on travelhubworld.com. flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call travelhub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
7: travelhub best service with unbeatable price
8: at all protected.
7: visit travelhub World.com.
9: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंदन पड़ रंगा से स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा, भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन, ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 0794092-4667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: 0730-99-8823.
3: नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300999।

0: आशा दाई किशोर दा और शैलेंद्र सिंह साहब की आवाज लावा फिल्म का ये गाना बड़ा ही दरकिनार रहता है, बहुत कम इस गाने को सुनने का मौका मिल पाता है, लेकिन संडे वाली महफिल में हम आपको सुनाएंगे इस तरह के गीत। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, आपके संदेशों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रितु शर्मा जी का। आगे बढ़ेंगे और अगला गीत आपको सुनाएंगे, हम सबके फेवरेट मुकेश साहब और उनके साथ हैं लता जी की खूबसूरत आवाज़। फिल्म का नाम है आशिक, लेकिन जो आशिक फिल्म के गाने सुनते हैं उससे थोड़ा मुख्तलिफ, अलग लेकिन प्यारा सा ये गीत है। और हमेशा की तरह दिल और दिमाग की बत्ती जलाने के लिए तैयार रहिएगा, दोनों इन हाउस कंपटीशन आपके लिए तैयार हैं। सुनते रहें सुपर संडे वाली पाठशाला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128 रुपीज़ 65 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
4: This part of the show is brought to you by Star Plus.
5: Previously known as Utsav Plus.
4: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 390.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: शैलेंद्र साहब के लिखे हुए बोल और शंकर जय किशन साहब ने इस फिल्म का दिया था संगीत और क्या कमाल का ये गाना रिकॉर्ड किया गया है। इस फिल्म में नजर आए थे राज कपूर साहब, नंदा जी और पद्मिनी जी जिन्हें वैजयंती माला जी का हम शक्ल भी कहा जाता था। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते थे, बिल्कुल उसी तरह का हाव भाव और बहुत मामूली सफर कहा जा सकता है कि हर दौर में इस तरह के एक्टर्स भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे दिव्य भारती जब आई थी तो पूजा भट्ट जी को भी उनका हम शक्ल माना जा रहा था, उनकी कॉपी मानी जा रही थी। स्नेहा उल्लाद जो कि ऐश्वर्या राय की कॉपी मानी जा रही थी, लेकिन कॉपी वाला ठप्पा अच्छा होता नहीं है भाई, अपनी आइडेंटिटी अपनी पहचान अलग होनी चाहिए। अगला गीत साथी के साथ सुनने वाला है, अपने जीवन साथी के साथ बैठ जाइए और इस गाने का लुत्फ उठाइए।
0: On Rag with Golden Rag.

0: आशादाई किशोरदा की आवाज में हेमा जी का मस्त सुपर हिट वाला अंदाज सीता और गीता फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे। अब थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाते हैं, 60s में जाते हैं और रफी साहब की आवाज में ये गाना सुनते हैं जो सच में एक किसी मैजिक से कम नहीं है, जादू से कम नहीं है।
1: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.

0: 1971 में आई थी फिल्म दुश्मन, वादा तेरा वादा सच्चाई छुप नहीं सकती। किशोरदा की आवाज में कवाली वाला माहौल बन गया है भाई। और अगले गीत के बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट आवर के लिए जहां जलानी है आपको अपने दिमाग की बत्ती और वो गोल्डन बर्ड क्या होने वाला है थोड़ी देर में। लेकिन अगला गीत बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि हम डेडिकेट कर रहे हैं लता भट्ट जी को ये गीत। अब सोच रहे होंगे लता भट्ट तो कहीं कोई लिसनर तो नहीं है? नहीं नहीं, ये हैं जिन्हें हम प्यार से जानते हैं उनके सुरों की वजह से, जिन्हें हम हिंदी सिनेमा में हेमलता कहते हैं। आज उनका है जन्मदिन, हैप्पी वाला बर्थडे। तो उनकी फिल्म का बड़ा सा प्यारा नगमा है अखियों के झरोके से। आपने फिल्म सुनी होगी, उसका टाइटल ट्रैक भी है, लेकिन आज वो हम आपको नहीं सुनाएंगे। उसी फिल्म का एक और गीत है जो हेमलता जी ने बड़ी शिद्दत के साथ गाया है। सुनते हैं और इसके बाद बताते हैं आपको अगले घंटे आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन बर्ड।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 pound के बदले Indian currency में 129.25 Pakistani rupees 375.85 Sri Lankan rupees 450.39 Bangladeshi taka 166.44 Afghan Afghani 88.26 and 1 US dollar 1.35.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.06 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa or by using our Leica Radio mobile app.

0: हेमलता जी की आवाज में आज उनके जन्मदिन के मौके पर आंखियों के झरोके से फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। अब आप बताएं, हम सुनाए वाली थीम के लिए जहां जलानी आपको अपने दिमाग की बत्ती, उस थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड है प्यारी प्यारा, और प्यारे भी चलेगा, प्यारी प्यारा या फिर प्यारे प्यारे प्यारे गाने निकाली अपनी फरमाइश के पिटारे से, सुनते रहे सुपर संडे वाली महफिल।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय स्टार प्लस,
2: प्रीवियसली नोन एज उत्सव प्लस,
1: स्काई चैनल 705, वर्जिन मीडिया 803 एंड BT392।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
4: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम, और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
3: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
4: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंडन पड़ रंगा से। स्टार्टअप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा, भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन, ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 0794092-4667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. Star Tours.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Weddings, celebrations, corporate events, Ragasan sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 0208-839-0880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering, Ragasan.
2: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal Couture.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद ले. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027193 4.
3: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
4: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
5: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद
6: भी. बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB. कॉल 0779518101.
7: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
8: On Rag with Golden Rag.

शैलेंद्र सिंह साहब की आवाज में जमाने को दिखाना है फिल्म का एक खूबसूरत सा नगमा, जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो ये जरूर सुने। और पहला गाना हमने आपको सुनाया था खुद्दार फिल्म का, सानुदाल का याग्निक जी की आवाज में शालिनी जी ने इस गाने को हम तक पहुंचाया था। हालांकि गोल्डन राग की तरफ से मैंने गाना फर्स्ट कोई और रखा था, लेकिन ये गाना शालिनी जी कमाल का था। और दूसरा गाना गोल्डन राग की तरफ से आपको सुनाया गया है, दिमाग की बत्ती जल चुकी है, बहुत सारे खूबसूरत गीत हम तक पहुंच भी चुके हैं। देखते हैं किसकी फरमाइश का पिटारा खुला है। सबसे ज्यादा इस गाने को लोग सुनना चाहते हैं आज की थीम को रिलेट करते हुए। किसकी आवाज है ये सब सरप्राइज रहेगा, थोड़ी देर में सुनाते हैं किसने किसने भेजा।

0: ये भी बताते हैं, एक बार फिर से बता रहे हैं आज का गोल्डन वर्ड, प्यारा प्यारी। याद रखें, प्यार नहीं है, प्यारा या फिर प्यारी, और प्यारे भी काफी हद तक मैच करता है, इसलिए प्यारे भी चलेगा। अपनी अपनी फरमाइश का पिटारा खोलें, दो गानों की गुंजाइश है, देखते हैं किसका गाना खूबसूरत वाला आता है, प्यारा प्यारा सा गाना आता है और वो हम आपको सुनाते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले मिल रहे हैं आपको 128 रुपीज एंड 65 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय स्टार प्लस,
4: प्रीवियसली नोन एज उत्सव प्लस,
3: स्काई चैनल 705, वर्जिन मीडिया 803 एंड BT 39।

0: To book now, visit starters.co.uk or call
1: 0208-900-2323-073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099-8823.
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simsy before we left London.
2: Simsy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
5: T's and C's apply.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Teri pyari pyari surat ko kisi ki nazar na lage. Ye gana hum tak pahunchaya hai Vijay Godore, Ulaj ji, Sandhya Bhav sir, Harpreet ji, Bharat Ganga Ram ji, Amita ji, महेंद्र पटेल साहब, राजेंद्र सिंह, कालराजी और सुरेश फ्रॉम कैंटन. मुझे लगता है एक दो नाम फिर भी मिस हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम तक कलेक्ट होंगे वो नाम हम आपके लिए ज़रूर दोहराएंगे. अगला गीत आ रहा है रवि साहब और लता जी की आवाज़ में. देखें किसने भेजा है इस गाने को इस महफिल में शुमार होने के लिए.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: रफी साहब और लता जी की आवाज में कारवां फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत मीना शाह जी और सोमिला मुंगुर जी ने हम तक पहुंचाया था। और इससे पहले जो ससुराल फिल्म का रफी साहब की आवाज में हमने गाना सुनाया आपको, एक नाम रह गया था फरीदा गुलाम अली जी का। बहुत बहुत शुक्रिया फरीदा जी आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया मीना शाह जी और सोमिला मुंगुर जी का भी। अगला गीत रफी साहब की आवाज में आ रहा है, विंटेज गोल्ड वाला ये गाना है, लेकिन ये गाना सुनते ही मूड फ्रेश होने वाला है क्योंकि दिमाग को ये बहुत रिलैक्स करता है।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: काहे घबरा है, रफी साहब की आवाज में प्यासा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, अजिंक्या भावे और कमल पुरी साहब ने मूड फ्रेश करने वाला गाना भिजवाया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: Holiday breaks are brought to you by South Hall Travel.
0: Holiday के लिए सिर्फ एक ही डेस्टिनेशन South Hall Travel. Call South Hall Travel for the most competitive Dubai deals on 02085748410. At all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: ये है
3: Like a Gold.
1: Like a Extra.
0: Podcast episode number 29. Title is good, really the best investment. Hosted by Ravi Sharma. Mulaqat hogi Praveen Pathani, director of Minar Jewelers. Like Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Like Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Ye hai
2: Like Gold.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 02087828833 और विजिट travelhubworld.com
5: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड
5: विजिट travelhubworld.com
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office. On 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
6: High appreciation.
7: In Dubai.
8: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंडन पड़ रंगा से स्टार्ट मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा भक्ति नासुर गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934
9: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
10: Dad.
11: What's wrong, beta?
10: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
11: I will run down to the money exchange now.
10: No, dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
11: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
10: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
12: Ilford, ab asli Indian flavors ka maza lijiye.
13: परंपरा भी
14: फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड गैंसिल इलफोर्ड IG26HA कॉल 07555506015
3: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
13: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
15: Cutthroat Ke Khiladi.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
16: Hello, hello, hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m. Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: लता जी की आवाज में दुनिया की हर एक माँ को समर्पित ये प्यारा सा गीत राजा और रंग फिल्म का हम तक पहुंचाया था अमित पटेल साहब, हसुमती जी, अंजलि जी, जगदीश जी और कीर्ति जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए, दिल से शुक्रिया।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 129.2 पाकिस्तानी रुपीस, 375.84 श्रीलंकन रुपीस, 450.56 बांग्लादेशी टका, 166 अफगान अफगानी, 88.25 $1, 1.35
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.06 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Forgotten memories refreshed. Leica Gold.

0: अमित कुमार साहब आशदाई की आवाज़ में नास्तिक फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत हम तक पहुंचाया था नौशीन इमरान खान जी ने और सुनील कपूर साहब ने। अगला गीत आ रहा है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से और ये गीत हम तक पहुंचाया है सरफून और किरण जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही। अगले घंटे के लिए याद रखें अब जलेगी दिल की बत्ती, इसलिए गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस का आप भी कीजिए इंतजार।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is brought to you by Star Plus.
2: Previously known as Utsav Plus.
1: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
2: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
3: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: रफी साहब और लता जी की आवाज में स्वयंवर फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत। 1980 में ये फिल्म आई थी और कमाल का ये नगमा है। हमेशा इस गाने को सुनने के बाद क्या आ जाते हैं, गूज बम्स। बहुत सारे लोगों के आए भी हैं। एनीवेज आगे बढ़ेंगे और जल्दी से बताएंगे गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस से पहले इस कॉम्पिटिशन में, जिसमें जलानी है आपको अपने दिल की बत्ती और हम उसके बता देते हैं आपको तीन ऑप्शंस। लेकिन पहले कायदे प्लस कानून, तीन ऑप्शंस होंगे गाने के, जिनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा, उसे बतौर वोट कास्ट करना होगा। जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज़्यादा वोट समय रिसीव होंगे वो गाना हमेशा की तरह बनेगा आज का भी गोल्डन राग। भारी मतों से अपने गीत को विजयी बनाए हैं। ऑप्शन ए है गोल्डन राग के तीन ऑप्शन में से एक। ऑप्शन ए है रास्ते का पत्थर, किस्मत ने मुझे बना दिया। ऑप्शन बी है हाथों की चंद लकीरों का, फिल्म का नाम है विधाता। ऑप्शन सी है मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, फिल्म का नाम है प्यार का सागर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑप्शन ए है रास्ते का पत्थर, मुकेश साहब की आवाज़ में रास्ते का पत्थर फिल्म का ये गाना है। ऑप्शन बी है हाथों की चंद लकीरों का, फिल्म का नाम है विधाता। और ऑप्शन सी है मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, फिल्म का नाम है प्यार का सागर। वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें। अगला गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक लता जी की आवाज में, फिल्म का नाम है हिना। सुनते रहें सुपर संडे वाली पाठशाला।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक हमारी लता जी की आवाज में हिना फिल्म का एक प्यारा सा गीत एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ। आज के गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जो सुन नहीं पाए ध्यान लगा के सुनिए, एक्चुअली दिल लगा कर सुनिए। ऑप्शन ए है रास्ते का पत्थर, किस्मत ने मुझे बना दिया, फिल्म का नाम है रास्ते का पत्थर। ऑप्शन बी है हाथों की चंद लकीरों का, फिल्म का नाम है विधाता। और ऑप्शन सी है मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, फिल्म का नाम है प्यार का सागर। इसलिए क्योंकि अभी तक वोटिंग लाइन्स ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहे, बहुत सारे लोगों ने वोट किए हैं और मजबूर होना पड़ रहा है भाई, टाई ना हो जाए कहीं, लेकिन फिर भी आप लोग अभी कुछ गाने और आने बाकी हैं, इसलिए अपने अपने वोट कास्ट करते रहिए और अपने ऑप्शन को गोल्डन रॉक को भारी मतों के साथ विजयी बनाइए।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरीवैली.net।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ek tera saath Lata ji aur Rafi sahab ki awaaz mein wapas film ka ye khoobsurat sa geet. Yaad rakhiye, voting lines open hai, apne apne vote cast karte rahein.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
2: लाइक अ रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड राकासन. डिटेल्स एट laikaradio.com.
0: ऑन राग विद गोल्डन राग.
3: ये रातें

0: आशादायु किशोरदा की आवाज में विंटेज गोल्ड वाला गाना दिल्ली का ठग फिल्म से। और शेखर जी, आपने बड़ा परेशान किया है, एक बार फिर से बताना पड़ेगा आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए है रास्ते का पत्थर, किस्मत ने मुझे बना दिया, फिल्म का नाम रास्ते का पत्थर। ऑप्शन बी है हाथों की चंद लकीरों का, फिल्म का नाम विधाता। और ऑप्शन सी है मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, फिल्म का नाम है प्यार का सागर। ध्यान से सुन लीजिए और वोट कर दीजिए, क्योंकि अगले गीत के बाद बंद हो जाएंगी आज के लिए आज की वोटिंग लाइंस। लेकिन हम बहुत ही महान कलाकार को डेडिकेट कर रहे हैं, उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर उन्हीं की ज़ुबान से गाया गया गीत। इन जनाब का नाम है परवेज़ फ़तेह अली खां साहब, जिन्हें हम प्यार से नुसरत फ़तेह अली खां साहब कहते हैं। और आज उनकी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर उनका गाया हुआ गीत आपको ब्रेक के बाद सुनाएंगे, और उसके बाद बंद हो जाएंगी आज के लिए आज की वोटिंग लाइंस।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: ये है
3: Lyca Gold
4: TravelHubWorld.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
5: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Visit TravelHubWorld.com.

0: now visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: पल भर के लिए
2: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय सेवन पीस बैंड एंड मनीषा शर्मा गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25 बुक टिकट्स एट heroartcenter.com बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203-773-7161 एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक a radio network.
3: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
4: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
3: So where do we find something like that now?
4: Right here in London. Baidyanath Sidhayu hair oil, shampoo and toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
5: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
6: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
7: हॉन्सलो अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास
8: बीकानेर वाला परंपरा भी
9: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्सलो TW3 1QT कॉल करे 07487-687-885
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com T&Cs apply
11: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
12: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
11: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
12: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
11: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
12: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com लिमिटेड ऑफर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
10: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
13: Carotino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Carotino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Carotino Better Ghee.
14: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime on Leica Gold.

0: आफरीन आफरीन। परवेज फतेह अली खान यानी कि नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में 16 अगस्त 1997 में उन्होंने आखिरी सांस ली थी और इस दुनिया को अलविदा कहा था। आपको बता दें कि वोटिंग लाइन हो चुकी है बंद, चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। सुनते रहें सुपर संडे वाली महफिल।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 pound के बदले इंडियन करेंसी में 129.18 पाकिस्तानी रुपीस 375.72 श्रीलंकन रुपीस 450 बांग्लादेशी टका 166.17 अफगानी 88.39 एंड 1 US डॉलर 1.35.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.06 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: कमाल है भाई आप लोग, रवि साहब की आवाज़ और आशा ताई का साथ, प्यार का सागर फिल्म का ये गीत रवि साहब द्वारा म्यूजिक दिया गया था और प्रेम धवन साहब ने गाने के बोल लिखे थे। इसी गाने को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं। जल्दी से लेते हैं नाम, संतोष जी, नंदा, प्रवीण जी, अमित पटेल साहब, निर्मला जी, नीता जोशी, उल्ला जी, रानी सुनाहे, हसुमती जी, किरण जी, अमिता जी, रियाज अतर, बिपिन ज्योत्सना, हना, विजय गोदोरे, हंसा मिस्त्री, महेंद्र पटेल जी, मिसिस सुदेश टेकेयर, सुमन, सरत, जगदीश, अरुण गुडिका, नौशीन खान, शेखर जी, हरप्रीत जी, रानी जी, स्लाउस की रानी जी हैं, अच्छा, शकु जोशी जी, आप सभी ने इस गाने को दिया है वोट भारी बहुमत के साथ, बनाया है आज का गोल्डन राग। इसी के साथ आपसे अलविदा कहने का आ गया है मौका। नेक्स्ट आ रही है सरिता जी, जो कि स्टूडियो में आप ही पहुंची हैं थोड़ी देर पहले, इसलिए अब होगी आपसे अगले सप्ताह यानी कि नेक्स्ट वीकेंड में मुलाकात। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, मस्त रहें और यूं ही लाइका नेटवर्क के साथ अपना चोली दामन का साथ बनाए रहें। शुक्रिया।
1: ये है Like a Gold.
2: This part of the show is brought to you by Star Plus.
3: Previously known as Utsav Plus.
2: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392. Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
4: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
2: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
4: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
2: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
4: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
2: Apple Pay is available on compatible devices. Terms, conditions apply.
4: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
5: What food mein dinner plans?
6: Thoda classy, thoda desi.
7: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
8: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
7: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923227274. Book your table today.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carry, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन।
13: ड्रीमिंग ऑफ पैराडाइज,
14: डिस्कवर The Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
15: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
14: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
15: At all protected.
16: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
13: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
17: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
13: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
18: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है यूके. Indian Idol fame Sugandha Date live in concert. Sunday the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
19: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
20: Four beers, please, garçon!
19: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
21: Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Leica Gold.
22: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे Leica Gold Radio London and Greater Manchester in the evening show with Ashwini. Features बड़े ही interesting, amazing आप सभी के लिए.

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। आपको भी याद आ गया, ज़रूर आ गया होगा कि जब आपकी विदाई का बेला था या फिर आपने किसी को विदा किया, खासतौर पर अपनी बेटी को। फिल्म का नाम था अर्पण, जी ओम प्रकाश जी ने बनाई थी ये फिल्म। फिल्म में काम किया था जितेंद्र ने, राज बब्बर थे, रीना रॉय एंड परवीन बाबू थे। फिल्म का संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। एंड इस खूबसूरत से गीत में दो आवाज़ें आपने सुनी, लता मंगेशकर एंड सुरेश वाडकर जी की। ऑफकोर्स गीत को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। और आज के प्रोग्राम का आगाज़ मैंने किया फिल्म डर के एक अनदर ब्यूटीफुल गाने के साथ। उम्मीद करती हूँ गीत को आपने पसंद किया। यश चोपड़ा जी ने बनाई थी ये फिल्म, उन्होंने डायरेक्ट की थी। एंड हनी ईरानी की ये स्टोरी थी और स्क्रीन प्ले भी उन्होंने ही लिखा था। एंड संगीत था शिव हरी जी का। ये फिल्म 24th of December 1993 में रिलीज़ हुई थी। और अर्पण कब रिलीज़ हुई थी आपको याद है क्या? 1st of April 1983 में। किसी ने बिलीव नहीं किया होगा कि इतनी प्यारी फिल्म आ रही है, राइट? और डर के कलाकार थे सनी देओल, जूही चावला थी एंड शाहरुख खान। और इसका वो किरण बहुत फेमस हुआ था, याद है ना आपको? सारे गाने इसके बहुत खूबसूरत थे। और उन गीतों को किसने लिखा था ये जानकारी भी आप तक पहुंचा देते हैं। इन गीतों को लिखा था आनंद बख्शी साहब ने। अब ज़रा आपसे पूछ लूँ, कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इन्जॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ, ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। और किसी वजह से अगर तबीयत आज ठीक नहीं है तो आपके लिए दुआ करती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। किसी वजह से अगर फीलिंग लिटिल बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप, लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू एंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थे रखते हुए गाने तो चुन चुन कर लाती हूँ मैं। मेरी पसंद अक्सर आपकी पसंद भी बन जाती है और हर गीत के बाद आप मुझे अपने होने का एहसास भी दिलाते हैं। थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। और कल का प्रोग्राम मैं आपके लिए रिकॉर्ड करके गई थी, जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं लेस्टर मेला में हूँ। तो जाने से पहले सुबह सुबह मैंने उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया और आप तक पहुँचा दिया शाम को 4 बजे। और इनफैक्ट बीच बीच में मैंने भी अपना प्रोग्राम सुना और खूब मज़ा आया कि अपनी आवाज़ जब सुनते हैं, अपने किस तरह से पेश किया है प्रोग्राम, तो सुनकर अच्छा लगता है। लेकिन अपनी आवाज़ सुनना इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गाने जो बजाए उनको प्रेजेंटेशन वो पसंद आती है। खैर, आज के प्रोग्राम की बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है। मेरी कोशिश तो है एक ऐसे महान गायक को आपके सम्मुख, यस, आप मैं रेडियो पर लेकर आऊं और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाऊं। लेकिन आई कॉन्ट प्रॉमिस बिकॉज़ कभी कभी लाइन नहीं मिलती है, कभी कभी सेलिब्रिटीज़ नहीं अवेलेबल होते हैं, तो कोशिश रहेगी मेरी। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं हम।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट, SBI UK वालों के जरिए अगर आप पैसे आज ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो 1 British sterling pound कैन गेट यू 128 rupees and 65 paisas, अप टू दैट अमाउंट। डिपेंड्स करता है, डिपेंड्स कि कितने पैसे आप ट्रांसफ़र करा रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Summerwall with your weekend classics. This part of the show is brought to you by Star Plus,
2: previously known as Utsav Plus.
1: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392. After
3: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
4: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती.
5: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
4: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
5: Imran Hashmi is back in the much awaited sequel Awarapan 2.
4: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं.
6: तो फिर
5: witness powerful emotions, breathtaking action and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
7: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
8: No more worries for me or you.
9: Southall Travel, at all protected.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
2: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, कैफेज, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: भाई मेरे वो साथी जो बराबर मैसेजेस भेज रहे हैं और पहचान गए हैं कि कौन सा वर्ड है जिस पर बेस्ड है आज के प्रोग्राम के फर्स्ट आवर के सारे गीत. थैंक यू एवर सो मच. बड़ी एफर्ट करते हैं आप, बड़े ध्यान से सुनते हैं, पहला ही गीत सुनते पहचान जाते हैं कि क्या होने वाला है प्रोग्राम में. थैंक यू सो मच. और ये गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म कन्यादान. मोहन सहगल ने बनाई थी ये फिल्म. इसमें काम किया था शशि कपूर, आशा पारेख, ओम प्रकाश जी एंड पद्मा रानी भी थी इस फिल्म में. एंड फिल्म का संगीत बड़ा ज़बरदस्त शंकर जयकिशन ने बनाया था संगीत. एंड इस गीत में एक बुलंद आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की थी. और ये गाना कितना मशहूर हुआ था ये आप सभी जानते हैं. और इस गीत को पर्टिकुलरली इस फिल्म के इस गीत को लिखा था गोपाल दास नीरज जी ने. नीरज जी ने बहुत कम गीत लिखे हैं लेकिन जितने भी गीत लिखे हैं बहुत मशहूर हुए. तो आइए अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं. एक और बहुत ही प्यारा सा गीत आप तक पहुँचा रहे हैं कोकन नूडल्स वाले.
0: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: गीत आपने सुना, तीन देवियां फिल्म से चुना था इस गीत को, और इसमें काम किया था देवानंद, नंदा, सिमी ग्रेवाल, कल्पना मोहन एंड आईएस जौहर ने, एंड इस फिल्म का संगीत बहुत ही प्यारा एसडी बर्मन साहब का। और इस गीत में दो आवाज़ें जो आपने सुनी, पहचान ली होंगी किसकी आवाज़ें थी, याद आया या नहीं आया बता देती हूँ। किशोरदा थे और साथ में थी लता मंगेशकर जी की आवाज़। एंड एक्चुअली इस फिल्म के गाने कंपोज किए थे एसडी बर्मन साहब ने, लेकिन बहुत सी मदद की थी, असिस्ट किया था उन्हें आरडी बर्मन साहब ने भी। तो गीत आपको सारे पसंद आ रहे हैं, थैंक यू एवर सो मच। और आपने मैं अपने मियाँ मीठू नहीं बनती हूँ, पर आपने तारीफ़ की है मेरी भी, तो उसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू, इसी तरह से सुनते रहिएगा।
2: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Imagine a place where you can escape for a day. Get immersed in a world of rooms, inspiration and expertise, where you can laze in luxury accommodation and kids can feast from 95 pence. Tickets are free to everyone and include all the attractions. You've just imagined a day out at IKEA. IKEA, the wonderful everyday.
4: Ye hai Leica Gold.
5: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around one in five young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
6: TravelHubWorld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays humse sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
8: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
9: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
8: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
9: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
10: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
11: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
10: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
11: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
10: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner Leica Radio Network.
12: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
13: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
14: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
16: नाम क्या है?
17: हमजा अली मजारी।
12: Durandar, 15th and 16th of August at 9 PM on Star Gold. Title sponsor Watchdog Security. Associate sponsor Lemfi.
18: कुछ आवाजें सिर्फ गाती नहीं, जिंदगी भर याद रह जाती हैं. और अब वही खूबसूरत आवाज पहली बार आ रही है UK. Indian Idol fame Sugandha Date live in concert. Sunday the 6th of September at the Mesha Lohana Center, London. Apni seats abhi book kijiye. For more information, call Ashwin on 07956-278-228. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
19: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
20: Look, there's a snail! And its eyes are sticking out of its antlers. It looks like an ice cream.
21: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
20: Conditions apply. See online for details.
22: अपने business को UK के largest Asian commercial radio network पर advertise करने के लिए call करें. Like our radio sales on 0207-132-1458 या email करें sales@leicamedia.co.uk.
23: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड, रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे

0: आशा भोसले जी की आवाज़ में आपने ये गीत सुना और उम्मीद करती हूँ पसंद भी किया। सभी बड़े प्यार से मैसेजेस लिख रहे हैं। एक्चुअली आज बहुत सारे बर्थडेज हैं या बर्थ एनिवर्सरीज हैं, राइट। सबसे पहले तो बर्थ एनिवर्सरी है मनोरमा जी की, आज ही के दिन 1926 में पैदा हुई। आज सैफ अली खान अपना बर्थडे मना रहे हैं, महेश मांजरेकर अपना बर्थडे मना रहे हैं, डेविड धवन इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, मनीषा कोइराला का भी आज ही बर्थडे है, उपिन पटेल एंड सिंगर हेमलता दे ऑल हम सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, तो उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और मैंने परंपरा के दो गीत चुने पर डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत नेक्स्ट आवर के पहले दो गानों में से एक होना चाहिए, फूलों के इस शहर में या मेरे साथिया। कौन सा गीत आपको पसंद है जल्दी से बता दें, फूलों के इस शहर में ए और बी मेरे साथिया, जल्दी से बताइए परंपरा का कौन सा गीत आपको पसंद है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, a pound in your pocket can get you today Indian rupees 129.15, Pakistani rupees 375.47, Sri Lankan rupees 450.31, Bangladeshi taka 166.13, Afghanis 88.45.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's £104.06 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. This is Leica Gold.
3: This part of the show is brought to you by Star Plus,
4: previously known as Utsav Plus,
3: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
5: Deirdre, look, it's the bottomless this time, sliding across their car bonnet.
6: Leave them be, Philip. They just claim confident.
5: Claim confident?
6: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
5: Deirdre? Deirdre? Come back here!
7: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
3: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
8: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
9: हेलो रे हेलो, आज जन्माष्टमी कान्हा ना रंगमा लंडन पर रंगा से स्टार्ट अप मीडिया प्रेजेंट्स जन्माष्टमी भजन जैमिंग विद नंदलाल छांगा, भक्ति नासुर, गरबानी मस्ती अने कृष्णा सेलिब्रेशन, ऑल इन वन अनफॉरगेटेबल इवनिंग। 5th September, Wembley. 6th September, Crawley. Tickets only £25. Book now. Call 07940924667. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Location, location, location.
11: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
10: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
10: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
10: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
10: High appreciation.
11: In Dubai.
12: Start to-

0: Now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Dad.
2: What's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
2: I will run down to the money exchange now.
1: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
2: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
5: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
6: परंपरा भी
7: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 0779518100।
5: सितंबर महीना में हसन और डबल धमाको फरी आवी रहे छे।
8: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
9: ए तमे स्त्री हो ने छे, पुरुष हो ने खोटा होबो वालो बंद करो।
5: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लेने आवी रहा छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान। હવે રાઇસલી, પોટર્સ બાર, ઇલફર્ડ, સાઉથ લંડન અને લ્યુટન માં ટિકિટ્સ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુને ઓન 0793153420। નાટકનું નામ યાદ રાખજો,
10: Sarita Sabharwal with your weekend classics. 7 stations, 1 podcast, 1 mobile app. This is the Leica Radio Network.

बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और दोनों गीत सैफ अली की फिल्मों से थे. सैफ अली मंसूर अली खान पटौदी इनका पूरा नाम. और ये मना रहे आज अपना बर्थडे. 16th अगस्त 1970 में इनका बर्थ हुआ था. इंडियन एक्टर हैं आप सभी जानते हैं एंड फिल्म प्रोड्यूसर हु प्राइमरली वर्कड इन हिंदी फिल्म्स एंड इन पटौदी घराने से हैं ये. आप सभी अच्छी तरह से इनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं. एंड ही हैज़ won several awards including National Film Award and 7 Filmfare Awards and received the Padma Shri, the 4th highest Indian civilian award in 2010. He made his acting debut in Parampara, 1993 में आई थी फिल्म जिसका गीत आपने सुना. एंड ही हैड सक्सेस इन दिस मल्टी स्टारर फिल्म. देन उसके बाद ये दिल लगी 1994, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी 1994 एज वेल एंड कच्चे धागे इनकी रिलीज हुई थी 1999 में. उस फिल्म का गीत आप नेक्स्ट आवर में सुन पाएंगे क्योंकि मनीषा कोइराला भी अपना बर्थडे मना रही हैं. पर मनीषा डी एंड पेयर विद सैफ अली खान. मनीषा विज शी वॉज पेयर्ड विद अजय देवगन और इनके साथ ही नम्रता शिरोडकर. आई थिंक सो नाम मैं ठीक ले रही हूँ. नम्रता शिरोडकर थी उस फिल्म में. उस फिल्म के भी दो गानों में मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ. खाली दिल नहीं या फिर आप सुनना चाहते हैं प्यार नहीं करना जहाँ सारा कहता है. कौन सा गीत आपके दिल के करीब है जल्दी बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट आवर में प्ले कर पाऊँ. राइट. और हम साथ साथ हैं उस फिल्म का गीत सुना आपने. ये फिल्म आई थी 1999 में. उसके बाद की जितनी भी फिल्में हैं वो 2000 से बाद हैं तो मैं और कोई

0: ये गीत आपको नहीं सुनवा पाऊंगी, लेकिन इन्होंने बहुत सी फिल्मों में काम किया है आउटस्टैंडिंग, लाइक दिल चाहता है, कल हो ना हो, हम तुम, परिणीता, सलाम नमस्ते, तररमपम, एक हसीना थी, उसमें भी इनका काम बहुत अच्छा था, ओमकारा वॉज अनदर फिल्म वाओ, एंड रेस, देन रेस टू, लव आजकल, कॉकटेल, ऐसी बहुत सी लंबी लिस्ट है। हमारी तरफ से पटौदी साहब को बहुत बहुत मुबारक हो, सैफ अली खान, हैप्पी बर्थडे टू यू। इनसे भी मुलाकात हुई, इन्हें भी इंटरव्यू मैंने किया हुआ है, एंड वेरी वेल स्पोकन, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, एंड बहुत इज्जत से बात करते हैं। एनीवे, सैफ को बहुत बहुत बधाई हो। और जितने भी मेरे साथी मुझे बराबर मैसेजेस लिख लिख कर कह रहे हैं ये गाना सुना दो या वो गाना, तो आई एम सॉरी, 90s में ही इन्होंने काम शुरू किया और 90s के ज़्यादा गीत हम प्रोग्राम में शामिल नहीं करते हैं। इनफैक्ट एक 90s और 80s का होता है बैक टू बैक, पर मैंने आज दो गीत आपको सुनवा दिए, एंड नेक्स्ट आवर में भी दो गीत मैं सुनवाऊँगी, एक कच्चे धागे से और एक किस फिल्म का होना चाहिए। वेल, आपने अर्लियर ऑन जो प्यारे प्यारे गीत हैं मनीषा कोइराला पर पिक्चराइज हुए, लाइक आज मैं ऊपर, एंड ऑल्सो फ्रॉम 1942 अ लव स्टोरी, वो बज चुके हैं आज हमारे यहाँ से, तो आई विल प्ले अ नाइस सॉन्ग फॉर यू, सुनते रहिएगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, इनके जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आप ब्रांच में जा सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, या SBI Yono मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। बहुत काम आसान है, और अगर आज आप इस वक्त का पैसे करवाना चाहते हैं तो बता दूं कि आपको बहुत अच्छा रेट भी मिल रहा है, और रेट है 128 rupees and 60 paisas, बट इट डिपेंड्स कि कितने पैसे आप ट्रांसफर करा रहे हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: In 10 meters, take a left at the pile of washing.
3: Sorry, what?
2: At the Valley of Toy Dinosaurs, approach the kitchen with no room to cook.
3: Huh?
2: Turn right at the floor drove.
3: A floor drove?
2: You've reached chaos. Recalculating.
3: No,
2: suggest immediate course correction to IKEA for fitted wardrobes, children's storage, and cupboard organizers.
4: Find your way back to calm. Discover smart storage at your local IKEA now. IKEA, the wonderful everyday.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics. Like a gold. This part of the show is brought to you by Star Plus,
5: previously known as Utsav Plus.
1: Sky Channel 705, Virgin Media 803, and BT 392.
6: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
7: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
8: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 8574 8410। साफ ट्रेवल, at all protected.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934।
2: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for 4 people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments, and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box. Celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
3: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक।
4: हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा।
3: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ। 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो। 30th अगस्त वुडमिंस्टर स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM। शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 07947561947।
5: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
6: बीकानेर वाला
7: परंपरा भी, फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
8: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
9: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
8: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
9: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
8: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस।
9: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। Limited offer. Terms and conditions apply.
10: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org, assuming you want to get noticed.
11: Like a Cool, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Cool aur online suno likeagold.com pe.
12: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये खूबसूरत सी आवाज आपने सुनी हेमलता जी की, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेबैक सिंगर्स ऑफ 1970s एंड 80s एंड हु इज रिमेम्बर्ड फॉर हर मेलोडियस वॉइस एंड सॉन्ग्स लाइक तारे कितने नील गगन पे तारे, जब दीप चले आना, इसके अलावा अखियों के झरोखे से आपने सुना तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है और कौन दिशा में लेके चला रे बतुया, इसके अलावा भी बहुत सारे गीत हैं पर इस आवाज़ का आज अब बर्थडे मना रहे हैं हम। कौन है जिनका हम बर्थडे मना रहे हैं? ये है हेमलता जी और आई एम सो लकी। मैंने इन्हें अर्लियर ऑन मैसेज किया था कि हेमलता जी आज आपका बर्थडे है, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। तो मैंने कहा आई वुड लव टू हैव यू ऑन एयर। तो देखिए ये आवाज़ आप तक पहुंचा रही हूँ। हेलो हेमलता जी, कैसी हैं आप? हेलो,
1: थैंक यू सो मच विशिंग मी। मैं अच्छी हूँ, ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। जब कभी भी मैंने आपको मैसेज किया है आपने हमेशा जवाब दिया है और हमेशा मुझसे बात भी किया है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी अपने सभी लिसनर्स की तरफ से भी कि आप ऑन एयर आई हैं। किस तरह से मनाया आज आपने अपना बर्थडे?
1: आज का बर्थडे जो है ये मेरा 73rd बर्थडे है
0: जी जी,
1: और 15 तारीख की रात के 12 बजे से लेकर अब तक
0: फोन
1: जितने टेलीफोन इतने टेलीफोन्स और इतने विशेस इतने ब्लेसिंग्स इतना ढेर सारा प्यार
0: जी जी बिल्कुल। आप
1: ये सब सुनकर यही फीलिंग आती है कि एक आर्टिस्ट को इससे बढ़कर और क्या चाहिए ना?
0: बिल्कुल कुछ नहीं।
1: तो एप्रिसिएशन मेरी सच्ची कमाई है
0: जी
1: और इसको मैं अपनी खरी कमाई कहती हूँ।
0: तो आप लंदन कब आ रही हैं?
1: देखो लंदन अब पता नहीं, कुछ संजोग नहीं बन रहा है,
0: संजोग नहीं बन रहा है। चलिए
1: सरिता, अभी पहले की तरह हमारे हमारे यहाँ शोज नहीं होते हैं।
0: जी जी जी,
1: पहले जिस तरह होते थे
0: जी,
1: क्योंकि हम लोग आर्टिस्ट लोग सारे इकट्ठे जाते थे
0: जी
1: शोज कर। मैंने लंदन में तो इतनी बार ऐसा हो गया था कि जैसे लोकल शोज कर रही हूँ।
0: लेकिन अब काफी अरसा हो गया आप आए नहीं हैं, तो इसीलिए मैंने पूछा कि कब आने वाली हैं आप लंदन में।
1: देखो कोई मौका लगे कुछ है।
0: बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ आपने गाए हैं गीत, रफ़ी साहब हों, आशा जी, लता जी के साथ, तो आप सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा आपका?
1: नहीं नहीं, हम लोगों को इक्वली उसमें आते थे मैं। तो मेरा सबसे पहला शो जो था
0: जी जी,
1: मतलब लता जी के बाद दूसरा
0: जी जी,
1: आतिश अगर कोई गया था और मैं और महेंद्र कपूर।
0: हाँ जी, बहुत आपने शोज किए
1: हम लोगों ने गाया था
0: जी।
1: व्हाट वाज अ वंडरफुल
0: एक्सपीरियंस था। हाँ जी, बहुत अच्छा जी।
1: हाँ सर, मिक्स ऑडियंस आती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: फिर उसके बाद तो मैंने दो बार और गाया रॉयल एल्बर्ट हॉल में
0: जी,
1: वेम्बली अरेना।
0: बिल्कुल याद है मुझे, वेम्बली कॉन्फ्रेंस होता था तब जी।
1: मैनचेस्टर में गाया, मैनचेस्टर में गाया, बर्मिंगहम में गाया
0: जी।
1: तो फिर इतने अनकाउंटेबल बार गाया, लेकिन पिछले कुछ सालों से
0: जी नहीं आना।
1: यहाँ म्यूजिक वर्ल्ड का थोड़ा
0: चेंज हो गया,
1: जैसे बदलाव हुआ है।
0: या
1: पहले हमारे ग्रुप्स होते थे।
0: हाँ जी,
1: तो हमारा कॉम्बिनेशन होता था, मैं और रफी साहब
0: जी
1: या मैं और महेंद्र कपूर, उनके साथ काफी काम किया,
0: बहुत काम किया। हेमलता जी, दिल तो चाह रहे कि आपसे बात करती रहूं, लेकिन मुझे अब अपनी बातचीत को यहीं समाप्त करना होगा। और मैंने गीत जो क्यों किए हैं वो एक चित चोर का है, तू जो मेरे सुर में, और दूसरा चंदा को ढूंढने, सितारे चले गए, एंड देन ले चल मेरे जीवन साथी। तो आप एक लाइन किस गाने की, ले चल मेरे जीवन साथी एक लाइन गाएंगी हमारे लिए?
1: सरिता मेरी इस वक्त आवाज बहुत खराब हो रही है।
0: अच्छा कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं गाना सुनवा दूंगी।
1: मेरे घर में पेंटिंग का काम चल रहा है।
0: ओके, तो वो फ्यूम्स से उस तो आपको हो रहा है।
1: पहले कुछ प्राइमर लगाया जाता है, यू बिलीव मी?
0: जी जी आई डू बिलीव यू, थैंक यू।
1: मेरे बुरे हाल है, खास खास के मेरे और आंखों से ऐसे पानी आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मैं रो रही हूँ।
0: चलिए, यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, हमारी तरफ से बहुत सारा प्यार।
1: मैं आपकी फरमाइश जरूर पूरी करूंगी।
0: हाँ जी,
1: टुडे आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल मैसेजेस एंड से माई हेलो
0: टू एवरीबडी
1: एंड नमस्ते टू योर ऑल
0: फैंस, जितने भी सुनने वाले हैं सभी को, और आपके फैंस को जी। थैंक यू सो मच,
1: यहाँ लाने वाले जहाँ मैं हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू एवर सो मच। ओके, फिर मैं बात करेंगे। अब आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपके कुछ गाने सुनवाते हैं। थैंक यू हेमलता जी, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। बाय बाय बाय, नमस्ते।
2: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली।
3: हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
2: सरिता सबरवाल, द बिगेस्ट क्लासिक Some like a gold।
0: और भाई, यही मैं आप सभी को कुछ याद दिलाने जा रही हूँ, और याद ये दिलाने जा रही हूँ कि बहुत से शोज़ हो रहे हैं। उदित नारायण, आदित्य नारायण लाइव आ रहे हैं, और 20th December को संडे का दिन होगा, ओवो अरीना में वो दोनों परफॉर्म करने वाले हैं। टिकट मास्टर से टिकट्स बुक करा सकते हैं। AXS और एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क। सुनील ग्रोवर आ रहे हैं एंड ही इज़ कमिंग ऑन थर्सडे 29th October को इन लेस्टर एट मैच्योल अरीना ऑन संडे 31st October को। वेम्बले में होंगे ऑन 29th October को। टिकट्स सेम आप AXS से ले सकते हैं, इवेंट ब्राइट एंड टिकट मास्टर से खरीदी जा सकती हैं।
2: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now. Sarita Sabarwal, the biggest classics on Leica Gold.
0: Hemlata ji ki awaaz aap tak pahuncha rahi hoon. Bahut pyara geet hai. Iski do version thi. दो भी नहीं बल्कि तीन वर्जन थी। हेमलता जी ने गाया था, रफी साहब ने गाया और मनहर रुदास जी ने गाया था। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। गाना बहुत लंबा है, मैं पूरा नहीं सुनवा पाऊंगी क्योंकि बातचीत लंबी थी, लेकिन एंजॉय कीजिएगा।

0: Extra podcast update.
1: राइट भी रवि शर्मा जी हैं होस्ट इस पारी के एपिसोड में. एंड टॉपिक क्या है, इज गोल्ड रियली द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, जानने के लिए आप ये प्रोग्राम जरूर देखिएगा. लाइक आ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म.
0: लाइक आ एक्स्ट्रा इज हियर. गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव.
2: हाय, आई एम क्लैप्ड एंड आई एम द ऑपोजिट ऑफ अट्रैक्टिव. If you're calling someone a 10, it's definitely not me. I usually show up when someone's appearance becomes the punchline. So if I pop up in your kid's feed, it might be time for a chat. Search Tesco Mobile Online Safety to find out how to start the conversation at home.
3: We know your family matters most. That's why we're happy to be your second most important network. Tesco Mobile. It pays to be connected.
4: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस with unbeatable price.
5: At all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
7: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra? Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 hour line.
9: September mahina ma hasya no double dhamako fari aavi rahyo chhe.
10: Tame bata purush ho to lagne kuvara ho chho.
11: E tame stri ho amne chhe ne purusho nam khota obovano band karo.
9: Comedy king Nimesh Shah ane queen of comedy Mallika Shah laine aavi rahya chhe. Super hit Gujarati natak Halo Patel bhai ni jaan ma. Have rice slip Potter's bar Ilford South London ane Luton ma. Tickets ane vadhu mahiti mate aaj j call karo Manju ne on 07931534270. Natak nu naam yaad rakhjo.
12: Kajal Couture's biggest end of season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewelry from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
8: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
13: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
14: द वेट इज ओवर. इमरान हाशमी रिटर्न्स इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ अ कल्ट क्लासिक अवारापन 2.
13: उसने मुझे छुआ पर अपनाया नहीं.
15: तो फिर
14: Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.

0: ऐसे बहुत से यादगार गीत हैं जिनमें अपनी आवाज़ दी हेमलता जी ने। न सिर्फ फिल्मी गाने गाए हैं इन्होंने, रामायण जैसे एपिक में भी बहुत से गीत गाए, टीवी सीरियल्स में उत्तर रामायण में श्री कृष्णा, और भी बहुत सारे प्राइवेट एल्बम्स इनकी रही। उम्मीद करती हूँ गीत आपको पसंद आ रहे हैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, अगर आप पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं आज तो काम बड़ा आसान है। और कितने पैसे आपको मिल सकते हैं ये भी जान लीजिएगा। इंडियन रुपीस एक पाउंड के बदले 129.15 एंड पाकिस्तानी रुपीस 375.40 एंड श्रीलंकन रुपीस 450.30 एंड बांग्लादेशी टका 166.16।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. LIKA Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: It's £104.06 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
2: Like a gold. Like a gold. Like a gold.
3: This part of the show is brought to you by Star Plus,
4: previously known as Utsav Plus.
3: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 39.

0: across Greater London. This is Leica Gold, 10:35 a.m., DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
1: The top stories this hour. A murder investigation's underway after a man died after he was bitten by a dog in Wakefield. Barry Weir reports.
2: Police were called to a footpath off Blacker Lane in Calder Grove yesterday afternoon following reports of an altercation between two men. A 55-year-old was bitten by the animal and taken to hospital where he died shortly after 7pm. Another man, who's also 55, has been arrested on suspicion of murder and owning a dangerously out-of-control dog causing injury. The animal has been seized. Detectives also want to trace two women who stopped to help. One of them gave their name as Sophie.
1: Crews have been brought in from as far away as London and Cumbria to help tackle major wildfires in South Wales. Crews there are responding to 14 incidents with the support of military personnel. A senior probation officer has warned of serious concerns about the early release of prisoners in England and Wales going wrong. Around 5,000 inmates could be let out from October. That includes domestic abusers and some killers. The Chief Inspector of Probation, Martin Jones, worries the service won't be able to cope.
3: I think ultimately we need to be realistic about this. The power can a probation service, which is under huge pressure, do the very best it can to mitigate their risk. At the moment, we're asking them to perform miracles.
1: The Ministry of Justice insists there's record investment in probation. The rail line between Lewes and Haywards Heath will stay closed for at least another 10 days after a train derailed last week. Network Rail says engineers must recover three derailed carriages before they can fully assess the damage. People in New South Wales could be paid around £500 for handing in their rifles and handguns. Australia's Prime Minister has started the buyback scheme following last year's Bondi Beach terror attack. In sport, Manchester City have started life under new boss Enzo Maresca with a 3-0 defeat to Premier League champions Arsenal in the Community Shield. Championship side Stenhouse Muir have pulled off the shock of the Scottish League Cup second round with a 1-0 extra time victory over Motherwell. From Sky News, I'm Faye Rowlands.
0: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
4: राइट, आपको बता दें कि इस वक्त बाहर कितना टेम्परेचर चल रहा है, 23 डिग्री सेल्सियस एंड लंदन और आसपास के इलाकों में एंड लाइट क्लाउड्स एंड लाइट विंड्स भी चल रही हैं। कल मंडे है तो कल 26 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो ज़रा संभल के ही बाहर निकलिएगा। एंड मैनचेस्टर में, मिडलैंड्स में भी अच्छा मौसम है। मैनचेस्टर में 20 डिग्री सेल्सियस है तापमान और इट विल गो डाउन टू 14। लाइट विंड्स भी चल रही हैं, क्लाउड भी हैं। एंड मिडलैंड्स में लाइट क्लाउड्स एंड जेंटल ब्रीज, 26 डिग्री मैक्स एंड लो विल बी 17। और कल का मौसम भी ऐसा ही है, 24 डिग्री सेल्सियस रहेगी टेम्परेचर। तो अब ये तो सरिता हमेशा की तरह आपको ज़रूर कहेगी, अपने दिल का मौसम अच्छा रखिए, बाहर का मौसम जैसा भी हो।
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Sarita Sabharwal.
4: सरिता आपकी सेवा में हाजिर है। प्रोग्राम के लास्ट एंड फाइनल आवर में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पिछले आवर आपने पसंद किए। दोनों आवर्स में अच्छे अच्छे गीत थे शामिल, हेमलता की आवाज़ में गाए हुए, और कोशिश रहेगी जो गीत मैं नहीं शामिल कर पाई इस आवर में ज़रूर आप तक पहुँचा दूँ। आज मनोरमा जी की भी बर्थ एनिवर्सरी है। मनोरमा जी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई गाना उन पर पिक्चराइज हुआ है और आप जानते हैं तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और वो जो फिल्म, तीन फिल्में एक्चुअली जो आज ही के दिन रिलीज हुई, और उनके गीत शामिल करने की मैं ज़रूर कोशिश भी करूँगी। आइए सुनते हैं दो बैक टू बैक गाने, लेकिन मैंने चॉइस देनी है आपको कच्चे धागे का, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं, खाली दिल नहीं या फिर प्यार नहीं करना जहाँ सारा कहता है, कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है ज़रूर बता दें। मनीषा कोइराला का बर्थडे है, पहला गीत चुना है बॉम्बे से और दूसरा गीत कच्चे धागे का। जल्दी से मुझे जवाब दीजिए।
0: Leica Gold
5: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
6: Kahin se sasta, kahin nahi mil sakta.
7: Travel Hub.
6: At all protected.
5: Leica. Sarita Sabharwal.

बैक टू बैक दो गाने आपने सुने और मुझे उम्मीद है दोनों के दोनों गीत आपने ज़रूर पसंद किए होंगे। पहला गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म बॉम्बे। बॉम्बे मनीषा कोइराला की फिल्म थी, मनीषा कोइराला हीरोइन थी इस फिल्म की, और फिल्म क्या बताऊँ, इतनी खूबसूरत फिल्म थी। मनी रत्नम जी ने जिसे डायरेक्ट किया था एंड अरविंद स्वामी इनके साथ स्टार किए थे मनीषा कोइराला के साथ। बहुत

0: खूबसूरत कहानी थी एंड ए आर रहमान साहब का संगीत भी बेहद पसंद किया गया था एंड बहुत सी अप्रिसिएशन मिली थी मनीषा कोइराला को, हु इज़ सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे। तो हमारी तरफ से मनीषा कोइराला को ढेर सारी मुबारकबाद। बता दूं कि बॉम्बे के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे एंड इनकी एक्टिंग को भी बहुत सराहा गया था। तो मनीषा कोइराला बेस्ट एक्ट्रेस है, तमिल में जो वर्जन बनी थी उसमें मनीषा कोइराला को अवार्ड मिला था एंड जो हिंदी में बनी थी उसके लिए आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि मनीषा कोइराला को यस बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था 1995 में मनीषा कोइराला को एंड ऑल्सो स्पेशल अवार्ड टू अरविंद स्वामी एज वेल। और ए आर रहमान साहब को, मणिरत्नम जी को, सभी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। मनीषा कोइराला इज़ सेलिब्रेटिंग अ बर्थडे, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। कच्चे धागे का दूसरा गीत था जिसमें दो आवाज़ें आपने सुनी, अलका याग्निक एंड हंसराज हंस जी की। एंड इसके पीछे एक स्टोरी है, अगर आप कहें तो मैं बता देती हूँ। वैसे हंस जी भी इस बात को ज़रूर एग्री करेंगे और उन्होंने कहा भी है बहुत दफ़ा। आई वॉज़ गोइंग टू कॉम्पियर शो इन जर्मनी और नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का शो था, चैरिटी शो, एंड साथ में राहत फ़तेह अली ख़ान भी थे। तो जब मैं जा रही थी, बाई चांस हंस जी यहीं लंदन में थे, तो उन्होंने मुझे अपनी एक कसेट दी और कहा कि ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को दे देना। मैंने उन्हें जर्मनी में जाके वो कसेट दे दी। उसके 5-6 महीने बाद ही, ये 94 की बात है, तो 95 में आई थी ये फिल्म, 99 में आई थी। एनीवे, गाने पहले से ही रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो कुछ देर बाद ही हंस जी की आवाज़ हमने सुनी। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने इस गीत को कंपोज़ किया था और उन्हें बहुत पसंद आई थी हंसराज हंस जी की आवाज़। तो ऐसे सबब बनते हैं, कभी कभी आप किसका कोई ज़रिया बन जाते हैं। सो आई एम नॉट गिविंग क्रेडिट टू माई सेल्फ, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ कि मैंने इनकी कसेट दी थी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को कि आप प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर। खैर, बात हो रही है मनीषा कोइराला की, तो मनीषा कोइराला का आज बर्थडे है, उन्हें हम बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी दूंगी एंड उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी वैसे तो आपके पास ज़रूर होगी। शी वॉज बॉर्न ऑन 16 अगस्त 1970 में, नेपलीज एक्ट्रेस हु वर्क्ड इन इंडियन फिल्म्स एज वेल। तमिल फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है एंड पहली फिल्म इनकी नेपलीज फिल्म ही थी, फेरी भटियाला 1989 में आई थी। देन सौदागर्स में सुभाष घई साहब ने इन्हें लॉन्च किया था, विवेक मुश्रान थे शायद इस फिल्म के हीरो एंड दिलीप कुमार एंड राजकुमार दोनों फिल्म पैगाम के बाद आफ्टर 35 इयर्स एक साथ स्टार हुए थे 91 में एंड इस फिल्म का नाम था सौदागर। उसके बाद इनकी जब फिल्म आई बॉम्बे 95 तो धूम मचा दी मनीषा कोइराला ने। शी लुक सो ब्यूटिफुल एंड शी एक्टेड सो वेल इन दैट फिल्म। अग्नि साक्षी, इंडियन गुप्त, द हिडन ट्रूथ एंड कच्चे धागे, इसके अलावा कंपनी इन 2002, 1942 अ लव स्टोरी अगेन वॉज अ ब्यूटिफुल फिल्म एंड अकेले हम अकेले तुम, खामोशी वॉज अ वंडरफुल फिल्म। दिल से में इनका काम बहुत अच्छा था, लज्जा में बहुत खूबसूरत लगे, बहुत अच्छा काम था इनका। ऐसे बहुत लिस्ट बहुत लंबी है, हमारी तरफ से इन्हें बहुत बहुत बधाई हो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Aaj one British sterling pound can get you 128 rupees and 65 paisas. Agar aap paise bhejenge SBI Yono ke द्वारा, SBI वालों के माध्यम से। तो डोंट फॉरगेट, यू कैन एक्सचेंज मनी इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप है, तो घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। TNC अप्लाइज।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a Gold. This part of the show is brought to you by Star Plus,
2: previously known as Utsav Plus.
1: Sky Channel 705, Virgin Media 803, and BT 390.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
2: पल भर के लिए.
3: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज. Ibrox Events presents the iconic duo Rafi and Kishore, featuring Fahad Yaf, accompanied by a seven-piece band and Manisha Sharma. Golden era ke evergreen gaano ko relive kijiye. Sunday, 6 September, 5 p.m. at Hero Arts Center. Tickets start from just £25. Book tickets at heroartscenter.com. Box office ka number hai 02023737161.
4: Exclusive radio partners Leica Radio Network.
5: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे. कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस. कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 02089223444.
6: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट रागासन.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.

0: फिल्म जिगरी दोस्त से चुना था मैंने इसकी को। फिल्म में काम किया था जितेंद्र एंड साथ में थी मुमताज एंड पूनम सिन्हा। रविकांत नगरेचा ने बनाई थी इस ये फिल्म और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का, लता जी का गाया हुआ ये गीत, साथ दे रहे थे मोहम्मद रफ़ी साहब। ये आर्टिस्ट ऑफ द वीक में हमने गीत चुना, उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: लता जी की ही आवाज़ें और इनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं सुरेश वाडकर। राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म से मैंने चुना है इस गीत को, और ये गीत इसलिए चुना गया है आज के दिन क्योंकि 16 अगस्त 1985 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसे डायरेक्ट किया था राज कपूर साहब ने। राज कपूर साहब ने ही स्टोरी लिखी थी एंड रणधीर कपूर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। राजीव कपूर एंड मंदाकिनी ने इस फिल्म में काम किया था। रविंद्र जैन का था संगीत।

0: the track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Like a gold.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
4: और अब मैं शामिल करने जा रही हूँ वो गीत जिसकी फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी 16th of August 1991 में. माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर ने इस फिल्म में काम किया था. टी रामा राव ने बनाई थी ये फिल्म और भप्पीदा का संगीत, आवाज़ें मोहम्मद अजीज़ एंड आशा भोसले.

0: holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: राइट भी आपको बता दें कि साउथ हॉल ट्रेवल वालों ने ये अनाउंस किया है कि FCTO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. You can call South Hall Travel for the most competitive Dubai deals on 0208-574-8410 at all protected.
0: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: लाइका गोल्ड
3: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
4: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड
4: Visit travelhubworld.com.
5: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
6: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
5: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
6: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
5: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
6: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
5: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
6: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
5: One performer.
7: Countless personalities.
5: A whole universe of entertainment.
7: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
5: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
7: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises.
5: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
7: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
5: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
8: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
9: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
8: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
9: And you didn't pay those massive roaming charges?
8: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
10: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
11: Watford में डिनर प्लान्स थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी
12: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन
11: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स बटर चिकन पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम
12: फ्रेंड्स फैमिली या स्पेशल नाइट आउट इसे यादगार बनाइए विजिट विवेक हाउस वॉटफोर्ड कॉल 01923227274 बुक योर टेबल today.
13: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal's Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal's Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal's Couture.
14: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 at all protected.
15: Honslow, ab India ka favorite swad bilkul aapke paas.
16: Bikaner wala parampara bhi swad
17: bhi. Bikaner wala mein enjoy kijiye famous chole भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW3 1QT कॉल करें 07487-687-885
18: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम पंकज सोढ़ा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक
19: तुम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुरा
18: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ 29th ऑगस्ट हेज एंड हाई स्कूल हैरो 30th August, Woodmanstone School, South London. Dinner from 5 p.m. Show starts at 7 p.m. For tickets and more information, call Deepa on 07947-561-947.
0: Leica Radio Network. Proud. proud hospitality partner, Ragasan.
20: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: भाई LemFi के जरिए आपको मिल सकते हैं एक पाउंड के बदले इंडियन रुपीस 129.17, पाकिस्तानी रुपीस 375.40, श्रीलंकन रुपीस 450.15, बांग्लादेशी टका 166.8, अफगानी 88.51.
3: Like Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
3: LIKA
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: It's £104.06 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
1: This is the Like a Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: जी हाँ, आप सुन रहे हैं Like a Radio Network के जरिए ये आवाज आप तक पहुंचती रही. पिछले 3 घंटे से आपने मेरा साथ दिया. मेरा और आपका साथ है अभी 7 बजे तक और अभी 10 मिनट बाकी बचे हैं. और मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह विंटेज गोल्ड प्रोग्राम लेकर. मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपको हेमलता जी से मेरी बातचीत भी पसंद आई, जिसके लिए मैं तहे दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ. एंड सारे गाने बहुत अच्छे लगे. विजय गनोवा जी ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे. और अगर कल आप नहीं सुन रहे थे प्रोग्राम और परसों नहीं सुन रहे थे, तो मैं बता दूँ कि परसों यौम आज़ादी मनाया गया, पाकिस्तान का दिन था, और कल इंडियन इंडिपेंडेंस डे मनाया गया. सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई, बिलेटेड, क्योंकि कल के प्रोग्राम में भी मैंने आपको बधाई दी थी, लेकिन समहाउ यू मिस्ड इट. एनीवे, अब मेरे जाने का वक्त है. मेरे बाद आ रहे हैं सैंडी शाह. एंड दूसरी तरफ लाइक रेडियो पर आप सुनेंगे नीरज की आवाज़, और मैनचेस्टर में हम आपके साथ होंगे. जैसे हैव ए लवली वीकेंड.
5: This part of the show is brought to you by Star Plus,
6: previously known as Utsav Plus,
5: Sky Channel 705, Virgin Media 803 and BT 392.
7: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती.
8: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
7: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
8: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel Awarapan 2.
7: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं.
8: Witness powerful emotions, breathtaking action, and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
9: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
10: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
11: Southall Travel, auto protected.
12: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
13: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.

0: that doesn't play safe.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected. Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
3: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
2: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
3: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
2: For more information, contact 07585-801-801. Official radio partner, Leica Radio Network.
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
3: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's S-I-M-Z-Y.com. T's and C's apply.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
3: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awarapan 2.
2: उसने मुझे छुआ पर अपनाया नहीं. तो फिर
3: Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bacronia Media on Instagram.
4: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150 2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
5: You know how fans shout at football matches?
6: Oh, wake up!
5: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too, because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
7: London, Jazz Entertainment presents Bollywood legend live in London. Bollywood actor Aftab Shivdasani. Playback singer Aman Trikha.
8: Hello re, hello re, hello re.
7: और सोलफुल सिंगर मयूरी पटालिया लाइव हैरो में. सैटरडे 3rd अक्टूबर 7 PM हैरो आर्ट सेंटर. टिकट्स अभी बुक कीजिए हैरो आर्ट सेंटर बॉक्स ऑफिस से. मोर इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल 0777-161-5800. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
9: सैंडी शाह कंटिन्यूज विद लंदन्स बिगेस्ट बॉलीवुड क्लासिक्स.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Vintage Gold with Sandy Shah.
1: का वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
3: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
2: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
3: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 0192322727274। बुक योर टेबल टुडे।
1: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal Couture.
4: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
1: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
5: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
6: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
7: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB। कॉल 0779518100।
8: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English but louder.
9: 4 beers, please, garçon.
8: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
10: मुकेश और लता मंगेशकर के एवरग्रीन गानों की यादों में एक खूबसूरत म्यूजिकल शाम। पंकज सोठा प्रेजेंट्स हम तो तेरे आशिक,
11: तुम तो तेरे आशिक है सदियों पुरा।
10: स्वीट मेमोरीज ऑफ मुकेश एंड लता विद संगीता मेलेकर और मुख्तार शाह लाइव बैंड के साथ। 29th अगस्त हेच एंड हाई स्कूल हैरो, 30th अगस्त वुडमैनस्टन स्कूल साउथ लंदन। डिनर फ्रॉम 5 PM, शो स्टार्ट्स एट 7 PM। फॉर टिकट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794756194।
12: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
13: This is Laika.

0: होस्टेड बाय अनीसा नासिर। तैयार हो जाइए एक यादगार शाम के लिए जहां गजल्स मिलती है बॉलीवुड से।
1: शाम चलने लगे दिल मत
0: विद द लेजेंडरी अनूप जलोटा ऑन संडे 30th ऑगस्ट एट क्वींस थिएटर रॉमफर्ड। डोर्स ओपन 5 PM, शो स्टार्ट्स 6 PM, टिकट स्टार्ट्स फ्रॉम £40। बुक नाउ एट queens-theatre.co.uk। रेडियो पार्टनर्स लाइक अवर रेडियो नेटवर्क।
2: Kajal Couture's biggest end-of-season sale is on now. Fall in love with breathtaking bridal couture, elegant occasion wear, menswear and jewellery from one of Britain's leading Asian fashion houses. Visit Kajal Couture in Southall and Northwood. The biggest sale of the season is on now at Kajal Couture until stocks last. 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR. Kajal Couture.
3: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awara Pan 2.
4: Usse mujhe chua, par apnaya nahi. To phir
3: now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
5: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
6: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like our radio और like our gold, आपकी आवाज बन सकते हैं. On air हो, online या on ground, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@lykaradio.com.
7: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
8: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: भाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
1: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
0: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
3: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra?
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Vintage Gold on Leica Gold. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Leica Gold Greater London.

0: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन
1: गोल्ड पर हर रात की यही री पुराने मगर सदा बहार गीत।
2: जाना है

0: The biggest classics throughout the night, non-stop on Gold Nights.
1: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
2: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Southall Travel.
3: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
1: Southall Travel can take you there.
4: Southall Travel, at all protected.
5: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती.
6: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
5: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
6: Imran Hashmi is back in the much awaited sequel, Awarapan 2.
5: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं.
6: Witness powerful emotions, breathtaking action, and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Now in cinemas. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
7: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
6: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
9: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
11: नाम क्या?
5: हमदानी मजारी.
7: Durandar, 15th and 16th of August at 9 PM on Star Gold. Title sponsor, Watchdog Security. Associate sponsor, Lemfi.
12: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
13: Bollywood ke legend kalakar. सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: Like our gold.
1: This part of the show is brought to you by Star Plus,
2: previously known as Utsav Plus,
1: Sky Channel 705, Virgin Media 803, and BT 392. One performer.
3: TV के सामने तो प्रोसन से कह दे क्या पहनी है तुमने साड़ी भैया खिलाड़ियों के खिलाड़ी.
2: Countless personalities.
4: जिंदगी बर्बाद हो गया.
1: A whole universe of entertainment.
5: Nanana function रखा हुआ है.
2: Sunil Grover live UK tour 2026.
1: 29th October Ovo Arena Wembley London. 31st October Mattioli Arena Leicester.
2: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabi to brand new surprises, experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
2: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
7: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
6: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
7: गारंटेड.
6: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल.
7: फोन 02085748410.
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
2: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
8: Visit mantraholidays.co.uk or call 02037736333 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: Creatives Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
9: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना. परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा. 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में. समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक. नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें. शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271934.
10: Are we there yet?
11: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
10: Relax, I've booked the Uber already.
11: How? My roaming isn't even working yet.
10: I switched to Simsy before we left London.
11: Simsy? Since when are you the tech expert?
10: Since I decided I want a stress-free holiday.
12: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
2: T's and C's apply.
13: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर.